0: PM Sri Makada nomin in Chatarakpa, Mets Amazon Science Circle Exhibition Nasi, Lamla High Secondary School to Lusilagani, Nasi Arriven with the Art and Crafts Utkani, Paugi Marathan Atenba, Break Ama. Lauk Tok Saba Ama. Raizagi Social Welfare Department na Hub for Empowerment of Women Gimakada Logodoriba, Contractual Staff Singi Aiba Sanging, Ta Sikikun Marida Pangtok Lagani, Sanging Asi Imphal GP Women's College, Imphal College, Mara Sabodhachandra College, Sisi Higher Secondary, Wangkai High School, Surasanpurgi, Surasanpur College, Amasung Senapatigi, St. Anthony College, the Pangtokani. High River Center Sing Asida, Akanaba Posting Oiba Sanging Sing, Ayuk Amadi, Nimitungamatung, the Akanana Pangtokani. Candidate Singna, Examination Center Da, Sangyang Hogodabapung Amagi Mamangda, Masagi Admit Card Amadi, Marilena Identity Kangdopa, Documents in Paiduna Yorukadavani. Akupa Marol Department as a website www.socialwelfare.mn.gov.indagi Kangbayagani. Tabi Riba Pawasi Akas Bani Infaldagini. Pradhan Mithi Narendra Modi Nangasi Pangtoka Doriba Trama Panchuba Rozgar Mela Da Video Conferencing Kutang Na Sarkar Ki Tongan Tongan Ba Vibhag Singh Da Nauno Thabak Sangha Da Bamiyo Ilishing Yankai Ma Thoi Da Makhoi Makhoi Gi Appointment Letter Singh Pigani Laiba Ki Tongan Tongan Ba Pham Niputare Ta Pangtoka Doriba Rozgar Mela Ashi Da Pradhan Mithi Nawa Ngangani Ngasi Appointment Letter Yantoka Doriba Vibhag Singh Adudi Railway, Home Affairs, Health and Family Welfare Amadi Higher Education Ni Ning Singh Bayai Mamang the Pangtok by Rosga Melatan, Nipanda, Mue Lactan, Itoida, Apome Letter Sing Kusina Krabani. Kenge Petroleum Amazon Nasal Gas Mantral in Heidi, Barata Petroleum so diesel award Palaite, Social Media Tagat Pawarol Amada, Mantral in High, Miam Namakoki Tangai Padabasan Katamak Sijin Nebu, Tau Panglore Haiduna, Mipaiba Pauduna, Hidden Lysinduna Tambiganu. Retail outlet car the supply wali badu oil marketing company Singapore Pongna Duna Tangai Pedaba Tauxing Pangana Bhotnari. Need Uzi Parika question like Oibaga Mari Lainana CBI Nangarang Maru in a Senebemi Amagasu Fare, Parbemi, Asi Maharas Ragipune de Laiba, Set Hiralal Sar Prasala the Tabaktoba, Manisa Sanjay Habaldar Kawi. CBI in high, mark as you need Uzi Perikagi, Tabak Torum, the Maru in a Yau Bamadi, National Testing Agency, na expert Amo in a half Kibani. CBI in high, Manisa Sanjana, physics subjects, Kamari Lane, number one Kara, Taskitara Tarok the Fakiba, Manisa Mandare, the Kusinaki Heidi, Housey Pau the CBI in a Delhi, Jaipur, Gurugram, Nasik, Pune Latura Masung, Ahilia Nagardigi, Mutaramatoi Fare. Ngasi Ponga Pausi, sing Maru Pausing them Housey. Ketrimayum Biros Lady Biros
1: Tagatari Gorani Mukumentrina Raja Asida Santi Hanjinaba Wari Sabagi Tangai Fedabasing Fongdo Kiba Manipur Yauna Raja Sabagi member Kurmari Kanaba Mikal Juntara Nepal the Pangtok Lagani Haiba Amasung Fazin Kiba Naga Micham Tadorok Naba Numit Humnigi deadline Pikibagi Pausinga Nasi Fongari Bapauji Ayambagi Maru Bapau in the Fongli Pain Daba Hibasi Sarkada Taina Katabani Adubu Sarkada Taina Rivani Haiduna No Mugi Suraga Chaja Riversing the China Pibadi, the Honing De Haiba Mukimentri Yunam Kemchangi Wafumna, Naharul Todangi Ahanba headline Oiri. Bisnupur Amasung Churachatpur Jilagi, Lona Bamufum Singh the Low Ubagi Tabak Thoram Singh, Pangtokpa Amasung, Masiga Mari Lainaba Security Pibagi Matangda, Bifum Pangtoki Bagi Pauna, Manipur Melgi Anishub headline Oiri. CM na Lamsang Acida, RCC Gitong Ahum Sangakre, Pam Daba Tokya Toklabasu, Ban Blockade Nataba. Atopa Kongjang Singh Changsin Biu Haiba Yunam Khemchan Ge Wafumna Sana Leba Ki Anishub Headline Oiri. Sangai Express English Edition Da Waroi Puraknaba Wari Sagadabani Haiba CM Ge Wafum Akham Maklang Amasung Salam Ki Thong Singh Sangakre Haiba Pau Photo Ga Konana Ahan Balamai Da Fongli Pau Asegi Sangai Express English Edition Da Su Photo Ga Konana Fongli. Manipur Yauna Rajya Sabha Ki Member Kunmari Khanaba Mikal Juntara Marida Juntara Nepal Da Pangtok Lagani Ticket PBU Haidri Candidate Kanbagi process Taudri, MP Oina Tabak Karadi Taukibani Haiba, MP Lesemba Sana Zaubagi Wafumna, Huelan Pauki Anishub headline Oiri, नागा विलेज गार्ड एन सी ना मखोय गी मिचम तरुक फादोरनब अरोइबो मतम थाकरे हायबो पाउना पोनफुंग गी हानबा हेडलाइन ओरी पाव असी हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस की अनिशुभ हेडलाइन ओरी कुकी जो काउंसिल ना शांति पुरकनब अमसुंग कांगलुप अनिमक की फाजिनदुन थमलीब मियोसिंग थादोक पीनब अपील तौरकली हायबो पाव अमसुंग नागा गी मिचम फाजिन खिब अदु मत गी मतांगद लंगला लंगजिल अमत लैत्री हायबो मंत्री गोविंदा कोंथौजोंग गी वफुम ना पीपल्स क्रॉनिकल गी अहानब लमाई द फोंगली तमेंगलोंग जिला द प्री मॉनसून गी मांगोइना ना इसिंग क्वालिटी टेस्टिंग पांगतोलगनी अमसुंग अंसम गी प्रेसिडेंट काउंसिल ना इमरजेंसी मीटिंग हयेंग कौक्रे हायबो पाव असेना गानफ्यू मेल गी अहानब अमसुंग अनिशुभ हेडलाइन ओरी गोरानी
0: थागचेरी बिरोस होजिक अरुइबदा मरुइब पाव अमुक हना राइजे असे संगोंग गी पथोक मरांग काइने पथोकनबगि मतांगदा मुख्यमंत्री युनाम खेमजानगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ऑफिसियल सिंगा वफम क्या खनखरे सेक्युरिटी फोर्स राइजर्स के सिंग अमसुंग तपा की मफम सिंगदा थीब हुमगी थबक सथबद खुसु खुलाय अमसुंग यामलाबा निसागी फोलम सिंग फागतलेमदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगासी सरकार की तोंगान तोंगानबा विभाग सिंगदा नोनो थबक चंगदब मियोय दे सिंग यांखै माथोयदा अपॉइंटमेंट लेटर सिंग यंथोकनी पाउ लोइजरी
2: आकाशवाणी इम्फाल अदोम थोरम ताबिरिबासी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल नी हौजिक ताबीरसी थौनाउजम ब्रोजेंद्र सिंह ने सकप नोट अतालिका दर्शन।

ताबिरे थौनाउजम ब्रजेंद्र सिंह ने सकपनोट अटालिका दर्शन आकाशवाणी इम्फाल हौजे मुताबिर अथोपोंगो पेसोन खोंबा बासी।

ताबीरे अथोपम गो पेसोर ने खोंग बासी आकाशवाणी इम्फाल हौजे अयु की पुंग निपाल तारक पगा लोइनना दिल्ली दगी रिले दा समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज अमदी शिलोंग दगी रिले दा अवांग नोंपोक लमदम गी पाव ताबा फंबीरगनी।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
5: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
6: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
3: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
9: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
10: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपये की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की चार दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honoured with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
13: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
12: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. US Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the airport. The U.S. Department of State said during his stay in Kolkata, Mr. Rubio will visit Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said later in the day, U.S. Secretary of State will travel to New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad framework. President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The president was speaking after hosting a banquet in honour of her Cyprus counterpart, Nikos Christodoulidis, and his delegation at Rashtrapati Bhavan yesterday. She said technology and innovation have emerged as key forward-looking areas of the bilateral relationship.
6: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान साझा मूल्य विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
12: President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, also highlighted the friendship with India.
14: Cyprus and India appear geographically separated by thousands of miles. They differ slightly in size and population, and yet there is an invisible thread that has woven our countries and our people together and has seamlessly connected our countries for centuries.
12: Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. We have a report.
15: Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The recipient is selected annually from nominations submitted by force commanders and heads of mission across UN peacekeeping operations worldwide. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper to receive the honor. Earlier, Major Suman Gavani was awarded in 2019 for her service with the UN mission in South Sudan, while Major Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. India remains one of the largest contributors of troops and police personnel to UN peacekeeping missions across the world. Swati Rukheja, Akashwani News, Delhi.
12: The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest, marking a historic milestone in the force's mountaineering achievements. We have a report.
16: A 14-member team of ITBP comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on 21st of this month through the South Col route from Nepal side. The expedition was flagged off from the ITBP headquarters on 19th of April. As a part of its Clean Himalaya Save Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. Union Home Minister Amit Shah congratulated the team for unfurling the national flag atop Mount Everest. Mr. Shah said that by achieving this remarkable feat in extreme terrain and harsh climatic conditions, the team has upheld ITBP's motto of nation before self. Meanwhile, with this achievement, ITBP has now completed 232 mountaineering expeditions, including 5 successful Everest summits. The force has also scaled 6 of the world's 8,000-meter-plus peaks, including Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Lhotse, Mount Dholagiri, and

ताबीरे गाई खोता की आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लाथोचरी नोथोबम नरेंद्र जानेश्वरी लाइश्रमदगी मतम इसई अहानबदा सैसक्प नोथोबम नरेंद्र की खोंजलदगी जोय कुमार निंथौजान सैरेंबा असेंबा हायुने असुमना छेउबिसई।

ताबिरे सैसक्प नोंथोबम नरेंद्र मदि जानेश्वरी लाइश्रमदगी मतमिसै मथंग मथंग ओइना सैरेंखिब सिंदि मथंग सिदना जयकुमार निंथौजा थियाम रघुमनी हुइद्रोम नोरेन अमदि पंचरतन कोनथौजम।

0: लैवाक्ष नप्पा नप्पा का मापान तड़े या उन्हें बहुत नरक है।
1: सी यारोबदी, कुछ चाहे इधर काबू भगी, अब तो चंटू की के।
0: यस, करीनो, करीनो तारों में बंद हो गई थी। दादा, आई ना उरी माँ, न कोई की सत्तम सी बुक करीनो दादा। दादा,

한 걸음절이 하웅 헤이 시다바야 시다비야니 길로이 나이더바 마띵니 감나이더바 마야니 뿌야기 와리 학과 아한 바달람니 람다마 시부콘 비디바 농담 레이나 마카 타라파나 타비디 팔레 판다우 탐비르카 판다우이 팔라이 오이바 보놈마키 마팜다 나시나 나이 톨라바나 뿌야기 와리 길람다기 마농담 모랑 깡레이로니 파니 푸나 담비르 모 와리 싱기 마농다 몽이비마 아니므나 사나바쿰 하이 당직마기쿰 하이기 마농다 감바토이 비 아니기 와리기 빠링 따라까 마타기 마타 마지막다다 라이르마사 아돈 감바부 모랑능 덕진 고나 하텔라이바 농발라 다 공양바 아니 망나 사무 콩데 옛 모랑이 고리까 텐데 움나 따리 움나 싱 롱나 따리 롱나 싱 잉악 박다 이무 반페나 야이비 러기 타우랑마기 마타앙 보타라기 타글 오이제기 우야기 마팅나디 마힌 바이헨 키바 텐비리 바타라기 마이나 칸키바 ताबीजी पर पले पद पुन की मई नकन हिपन नाय तो लवन पुयागी वारी बु सही था जरक पता असोई पा आरान तब कया तब यौरक पतो नरांगी पारी नवानी खन भी रका लंगजव लखा दु गाक पीओ न तो लवन गलांग जर ये पुन म की म फम द हन हन खुरुम जरी सिगम लबा पुयागी वारी अक पसे न हानुंग कंगलई पुंग ई पुंग म यो योरेन खुन भी लोके सना लो कंगलई लुंगई यांग सरोत पुंग चिंगु मागी तुंग न फम खुयु मागे सना फम ओरी बा kangla ma pungya da pan phadi ba sembi kha ge ba haina ko ba ning thau du aduna apoi na na mai chogi pugi ma phamda wari gi lam dang se ma tang sin na ta ja rak bani koro gi yai bhari yai phe ba ni mit adu ma su adu ma da chu sembi kha ge ma ko ba ning thau du apoi na na mai chog wi ni pu ga cha ban i pu na li bi de po wari gi ma tung ni na mo rang kang ni rong gi wari da ma mang gi hau ki ba koro gi li bi ki ma tang do ताजनिंग बना मखा तारक पदो कौरांगे नहीं पो खंबा तो भी यानी कि वारी की मनुंग दा इपुन लिबी की वारी की लंदांग मखा दो नशी ताबीरो मोनांग खुली के थियन दा लाइर अदोन खंबा पो सियांगो इस हमु कोंग दी ने चिंग बगी मतांग लिबी के नहीं हाई की पदो ताजर की माले वे माय थक तो भम जगी इपु की नाक तो नक से की तने सेबी खांगे में कोबनिंग थो चंग झिल्ले अपोइनना माइचो मोमोन नोपने सेबी खागे मसिनिंग सुनिंग थौ लाइकोरे न्याय पबा ना पसिन न तारो पुयागी वारी हक पने ताबगी लोइनाय दे सखबगी खनाय दबा दाइबंग लेय न थारि मखै लेहुरग दबा इबुङै बेम अनिगी वारी नि मोरांग थांगिन कोरे लाइ सिङु माना सान ब कुमै वारी गदम न मखाली दगे तारो को हाइदना सेबी खागे मको बनिंग थौ चिङ न येदना अपोइनना माइचो वारी गलम दंग मखा सिन न तारे इदो सेसे सुनिंग थाओ मोरानिंग थाओ सेंबी तेलहिबति निंग थाओ मोरानिंग थाओ मन मथन खन ब मनाउ इबुङो जिंखु ब निंग थाओ रेना लाइले ब बु पाम दबा इना खुन ब बु पाम बगे मरम ना नोंग बाला था कोङ्या ब कौरि हेदगा लाइले अदोन खम बजि करम ना माइथि ब पिसि गे करम नम धसि गे द खलक बगे मातांग द वाचा नखिबा करम ना चाने हाय हाय मोयरांगिदि अंगंबा नोंबाला था कुंगयांबा लारे अदुन खंबसे याइबी मथ्वाई शिबा मते हिंग बमसे खांग लांग नद्रबति थोइबी इसान पि थोइबी से नंग न फंगोइ दवले करन मदि तौसी की खलक मत मसे मक तदा नोंबाला था कुंगया मदो पारे किलो सिंग सिंगे इनिंग थौ खुत फांग ता लुन चंगसिन जबने पारे लांगवेज समु अचौबा मोरांग गोरी के थेन अहिं नुंगया असिकपा मतांगे मत मसी मत दा लाइर खंबबु कौरी हेदगा निंथौ सनाया थंगनि कौबियो कौरी हेदगने मगो मकुत पुंदना थुबि लौरोय हायो थुबि लौरोय हायो मचिन यावा सेन हनजे लौरोय मक्तबु हायलबति थादोकचे कदिगम यादब मतांग बु थोलबदि मोरांग खोरी केतेन सेगाइन छौछाव लमदम दा लांगुई समु खोंग द पुल्लगा उमतारे उमसिंग लोनतारे लोनसिंग याइबी मथ्वाई लौसी नोमांगे यावादो मथन खंबनिंग थौनो होयारे भई अदुदि थेले हौजे मक चलोय दना दोलाई पाबा खुनथक पाबा खुनखा पुप दोलाई पाबा अनि थादना लाइर मचा खंबा सेंगै पाके लमदम द कौरुरो उक्चिन थोंखोंग तमर पुरक लगन्या मोरांग घोरी केथेन तमन पुर ओ
ꯌꯥꯋꯥꯍꯩ ꯃꯈꯣꯟ ꯆꯨꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯟꯕꯤꯒꯦ ꯆꯨꯝꯗ ꯃꯇꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯔꯥꯡ ꯈꯣꯔꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯝꯌꯥꯏꯗ ꯑꯍꯤꯡ ꯇꯥꯡꯂꯨ ꯂꯩꯅ ꯊꯦꯡꯕꯗ ꯂꯥꯡꯒꯣꯏ ꯈꯣꯡꯗ ꯄꯨꯜ ꯌꯥꯏꯕꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯂꯥꯛꯅꯒꯦꯗꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯏꯊꯪ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯥꯎꯊꯔꯛꯄꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯈꯨꯟꯊꯛ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯍꯟꯖꯕ ꯈꯨꯟꯈꯥ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯍꯟꯖꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯋꯥꯇꯥꯅ ꯍꯦꯔꯒ ꯆꯦꯡꯒꯩ ꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯧꯕꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅ ꯇꯈꯦꯜ ꯁꯃꯨ ꯍꯟꯖꯕ ꯀꯧꯏ ꯁꯃꯨ ꯍꯟꯖꯕꯗ ꯌꯥꯊꯪ ꯄꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯍꯟꯖꯕ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯡꯂꯨ ꯂꯩꯅ ꯊꯦꯡ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯡꯂꯨ ꯃꯇꯤꯛꯇ ꯃꯣꯔꯥꯡ ꯈꯣꯔꯤ ꯀꯊꯦꯟꯗ ꯂꯥꯡꯒꯣꯏ ꯁꯃꯨ ꯄꯨꯔꯛꯑꯣ ꯊꯥꯡꯒ ꯀꯔꯥꯡ ꯊꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯋꯥ ꯃꯅꯥꯎ ꯇꯥꯐꯗꯦ ꯌꯥꯋꯥꯁꯤ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒ ꯇꯈꯦꯜ ꯁꯃꯨ ꯍꯟꯖꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯌꯥꯊꯪ ꯏꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯅ ꯃꯔꯨ ꯂꯩꯗ ꯂꯨꯞꯇꯅ ꯂꯥꯡꯒꯣꯏ ꯁꯒꯣꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈꯤꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯝꯗꯧꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔ ꯃꯆꯥ ꯈꯝꯕꯗꯣ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯇꯔꯥ ꯆꯪꯅ ꯆꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯆꯦꯝ ꯈꯝꯅꯨꯒ ꯑꯋꯥ ꯄꯣꯊꯥꯔ ꯁꯤꯗꯅ ꯀꯥꯡꯗꯣꯟ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯕꯟꯊꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯝꯅꯦꯟꯗ ꯀꯥꯗꯅ ꯑꯋꯥ ꯄꯣꯊꯥꯈꯤ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯃꯊꯪ ꯈꯟꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯦ ꯑꯉꯣꯝ ꯅꯣꯡꯕꯥꯟ ꯀꯣꯡꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯣꯏꯔꯤ ꯀꯩꯊꯦꯟ ꯇꯝꯅ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯅꯗꯅ ꯈꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯏꯈꯤ ꯅꯣꯡꯕꯥꯟꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯇꯝꯕ ꯅꯤꯄꯥ ꯇꯔꯥꯅ ꯑꯣꯛꯆꯤꯟ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯗ ꯈꯝꯕ ꯉꯥꯏꯗ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯇꯝꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅ ꯈꯝꯕꯗꯣ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯄꯥꯕ ꯑꯅꯤ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯆꯦꯡꯒꯩ ꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯀꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥꯔꯤꯕꯨꯡꯉꯣ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯈꯝꯕ ꯃꯆꯦꯝ ꯈꯝꯅꯨ ꯇꯥꯕꯔ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯃꯇꯗ ꯈꯝꯗꯨ ꯄꯣꯟꯖꯦꯅꯨ ꯂꯥꯏꯔꯕꯤ ꯀꯥꯡꯗꯣꯟꯅꯔꯤ ꯄꯕꯟꯊ ꯈꯨꯝꯂꯦꯟꯒ ꯇꯨꯡꯈꯨꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤ ꯈꯨꯝꯂꯦꯟꯗꯨꯁꯨ ꯀꯝꯗꯧꯔꯦ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏ ꯈꯔꯕ ꯄꯟꯊꯧ ꯃꯄꯥ ꯆꯦꯡꯂꯧ ꯅꯤꯡꯊꯤꯕꯕꯨ ꯎꯔꯦ ꯌꯥꯋꯥ ꯋꯥ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯈꯝꯅꯨ ꯈꯨꯝꯗꯤ ꯃꯉꯥꯅ ꯅꯣꯡꯈꯤꯕꯅ ꯈꯝꯕꯁꯨ ꯇꯥꯗꯅ ꯈꯨꯝꯂꯦꯟ ꯇꯨꯡꯈꯨꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤ ꯇꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯄꯥꯕ ꯑꯅꯤꯅ ꯀꯟꯃꯟꯅ ꯀꯧꯗꯅ ꯈꯝꯅꯨꯗꯣ ꯈꯣꯡꯂꯦ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯏ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯅꯥꯇꯩ ꯀꯥꯡꯏ ꯆꯥꯗ ꯄꯣꯔꯣ ꯆꯠꯂꯤ ꯌꯥꯋꯥ ꯆꯥꯅꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯏꯅꯤꯡ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯉꯝꯕꯗꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯋꯥ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯍꯧ ꯂꯩꯅ ꯊꯦꯡꯕꯗ ꯏꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯧꯕꯕꯣ ꯕꯦꯃꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯏꯊꯪꯅꯦ ꯊꯥꯡꯒ ꯀꯔꯥꯡ ꯊꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤ ꯅꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯦ ꯅꯣꯡꯕꯥꯜ ꯊꯥ ꯀꯣꯡꯌꯥꯝꯕ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯋꯥ ꯆꯥꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯥꯡꯒ ꯀꯔꯥꯡ ꯊꯦꯡꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯊꯤꯟꯗꯅ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯀꯥꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯏꯊꯪꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯥꯕꯗ ꯈꯝꯅꯨ ꯄꯣꯟꯖꯦꯅꯨ ꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯇꯨꯕ ꯇꯨꯈ꯭ꯌꯥꯎ ꯆꯨꯝꯈꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯧꯅꯣ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯡꯂꯧ ꯊꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯧꯕꯕꯣ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔ ꯃꯆꯥ ꯈꯝꯕꯗꯣ ꯁꯥꯐꯤ ꯁꯦꯠꯂꯦ ꯂꯥꯟꯐꯤ ꯁꯦꯠꯂꯦ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯑꯆꯥꯔꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯥ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯅ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯇꯝꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯀꯝꯗꯧꯔꯦ ꯅꯣꯡꯕꯥꯜ ꯊꯥ ꯀꯣꯡꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯇꯔꯥ ꯑꯣꯛꯆꯤꯟ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯗ ꯉꯥꯏꯈꯤ ꯃꯊꯪ ꯈꯟꯕ ꯃꯅꯥꯎ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯁꯨ ꯃꯣꯔꯥꯡ ꯈꯣꯔꯤ ꯀꯩꯊꯦꯟꯗ ꯈꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯏꯗ ꯂꯩꯈꯤ ꯁꯦꯅꯣ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯀꯝꯗꯧꯔꯦ ꯇꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯇꯔꯥꯒ ꯇꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯇꯔꯥꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯅꯥꯏ ꯈꯨꯟꯊꯛ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯄꯥꯕ ꯈꯨꯟꯈꯥ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯄꯥꯕ ꯇꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏꯒ ꯑꯣꯛꯆꯤꯟ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯗ ꯌꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯥꯡꯅ ꯁꯥꯕꯗ ꯇꯨꯕꯠꯀꯤ ꯅꯥꯇꯩ ꯁꯝꯅꯗꯅ ꯇꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯇꯔꯥꯒ ꯌꯩꯅꯕ ꯃꯈꯩ ꯌꯩꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯈꯝꯕꯗ ꯇꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯇꯔꯥ ꯁꯒꯜ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯧꯈꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯌꯧꯔꯕꯗ ꯑꯉꯣꯝ ꯅꯣꯡꯕꯥꯟ ꯀꯣꯡꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯇꯥꯎ ꯃꯖꯥꯏꯕꯤ ꯃꯊꯣꯏꯕꯤ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯌꯥꯏꯕꯤ ꯀꯟꯕꯤꯒꯦ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯣꯔꯥꯡ ꯈꯣꯔꯤ ꯀꯥꯊꯦꯟ ꯅꯪꯒꯤ ꯌꯥꯏꯕꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯃꯇꯗ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯈꯝꯕ ꯈꯨꯠꯐꯥꯡ ꯇꯔꯥ ꯂꯣꯟꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯊꯪꯀꯠꯂꯤ ꯅꯅꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯩ ꯃꯍꯥꯕ ꯂꯩꯄꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯊꯪ ꯈꯟꯕꯕꯨ ꯅꯅꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯖꯗꯦ ꯃꯖꯥꯏꯕꯤ ꯃꯅꯕꯨ ꯌꯥꯔꯕꯗꯤ ꯅꯅꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯇꯥꯎ ꯅꯣꯡꯕꯥꯟꯅ ꯃꯖꯥꯏꯕꯤꯃ ꯂꯧꯈꯤꯕꯗ ꯅꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯃꯖꯥꯏꯕꯤꯃꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯕꯨ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯅꯅꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯖꯥꯏꯕꯤꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯏꯕꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯕꯗ ꯁꯤꯡꯅꯗꯦ ꯈꯨꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯃꯊꯪ ꯈꯟꯕ ꯑꯆꯆꯥ ꯂꯥꯛꯆꯩꯗ ꯌꯩꯔꯣ ꯌꯥꯊꯪ ꯄꯤꯕ ꯇꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯇꯔꯥꯗꯨꯅ ꯈꯕꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯩꯕꯕꯨ ꯈꯝꯕ ꯈꯨꯠꯍꯟꯗꯦ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯥꯡꯅꯤ ꯑꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯡꯅꯤ ꯐꯝꯗꯧꯒꯤ ꯃꯥꯡꯅꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯊꯧꯒꯂꯣꯟ ꯀꯥꯏꯒꯅꯤ ꯈꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯅ ꯈꯝꯕꯗꯨ ꯈꯨꯠꯍꯟꯗꯦ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯄꯤꯔꯦ ꯄꯨꯂꯨ

0: 웨스턴 뮤직의 더름다비리 아동네 더름다비리 버스의 아카시바니 인팔기 강라 채널기 더름니 하우직 다비로시 삭나이르 버슨기 와리 나시기 더름다 우두나 락처리 알프레드 노벨 잉글리싱무가 자니판 군트라움도이기 옥토버 기탕 군트라마토이다 스웨덴기 권웅 스톡홀름도 복기 마파기 마밍나 이마누엘 노벨 아마디 마마기 마밍나 앤드레드 노벨 거위 알프레드 노벨기 아싱바 마밍디 알프레드 버하르트 노벨 거위 알프레드 노벨기 마친 마나우 니파니 마학나 옴수브니 아두부 라이타라이라바 아마디 파이리바 이몽기 신팜나 마르모이두나 톡바 누가이타바 쿠동티바 타독싱나 마친 마나우 마리 아마디 ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯈꯝꯅꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛꯇꯃꯛ ꯉꯥꯏꯍꯧꯈꯤ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯏꯃꯥꯅꯨꯌꯦꯜ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯍꯣꯜꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯕ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯆꯦꯟꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯂꯛꯈꯤꯗꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯊꯥ 18ꯇꯃꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯈꯤ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯀꯔꯕꯥꯔꯗ ꯁꯦꯜ ꯃꯥꯡꯕꯗꯒꯤ ꯏꯪ 1992ꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯄꯤꯇꯔꯁꯕꯔꯒꯇ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯣꯡꯕ ꯇꯥꯈꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯄꯥꯏꯕꯨꯡꯅ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯀꯦꯜ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒ� ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯃꯥꯏꯕꯦꯝꯃ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜꯅ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯇꯝꯍꯟꯈꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 17 ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯔꯃꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯨꯡꯖꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯖꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯑꯅ�ꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯎꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯈꯥꯏꯒꯜꯂꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯥꯏꯠ ꯏꯪ 1989ꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ 1995ꯗ ꯕ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯖꯦꯂꯥꯇꯥꯏꯟ 1998ꯗ ꯕꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯅ�ꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ 455 ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯖꯜꯂꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯥꯜꯂꯝꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯝꯂꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ 1995ꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 17 ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯋꯤꯜ ꯑꯃ ꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯃꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 30 ꯁꯨꯔꯛꯄ 1996 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10 ꯁꯥꯟ ꯔꯦꯃꯣ ꯏꯇꯥꯂꯤꯗ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯪ 1999 ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ 1991 ꯍꯧꯔꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯉꯩꯗ ꯇꯥꯟꯖꯔꯝꯕ ꯁꯦꯜꯐꯝ ꯁ꯭ꯋꯤꯗꯤꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯣꯔ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ 93.5 ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯁꯦꯜꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯈꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯃꯈꯩ ꯀꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ 2:15 ꯆꯠꯂꯛꯂꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯦꯂꯦꯗ ꯗꯣ ꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया

0: भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का

0: और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था, साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगना चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी भाइयों के लिए दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

आज फौजी भाइयों की सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं ये पहला गीत। फिल्म का नाम है भूल भुलैया 3। आवाज़ दिया है श्रेया घोषाल ने।

फौजी भाइयों, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी फालकेंद्र के कंगना चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं हिंदी मीडियम फिल्म से एक गीत, आवाज़ दिया है गुरु रांधवानी।

आइए अब सुनते हैं हीरोपंती फिल्म से मोहित चौहान की आवाज़ में एक गीत। शब्द रचना कौसर मुनीर के हैं और संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर पेश है फन्ने खान फिल्म से सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार के युगल स्वरों में एक गीत।

फौज गीत हरम दाहो जगह दोनों ताबीरे फिल्म संगीत थारम संदोक तो न तान जरी बस या आकाशवाणी इंफाल की कंगला चैनल की थारम दे हौजिक संदोक सरी चिंगलोल की शेरोल सैरोल की हान बदा लोगिरोसी खोलपुआ मुइनिंग अमदी मपांग सकपा मरिंग मदमिसे सिंह

आकाश नारी इम्फाल वैसु यू कौ की चिदो हाई रेडियो ट्रिपुई मूलाहे पैबे चुतिले सोमंदा सहना दाता कौदे बुमारी सूजला ट्रिपुया मेडम फे मेट रचा पॉइंट हाली केलहर्स रचा रचा हा हिनो जो हाई एम जितना मे हिनो मपौ सूसू फ्रमचुलाय रायना जो वे कौ लखे आकाशवाणी इम्फाल जवे को हाय स्वच्छ माइकाल चौपे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन मवे प्राइम मिनिस्टर एच ई उल्फ क्रिस्टर संग ही लोटा पान वे लोटस पान सुयु चापाटा लोटा टी न गेप सयुबान गवर्नर अजय कुमार बाला आलिया चीफ मिनिस्टर यमनाम खेमचान साची हा पावे गवर्नर ने सोशल मीडिया अलह ने पावे प्राइम मिनिस्टर ने तेदे हाही ने पुप्रायु ना दे फाव माही पुप्रा जी मुझे पुए हा चौल सोए हना ने तेदे हाही माइन पुप्रायु ना अल्या छा मुरा ना ग्री पुप्रा जी मुझे पुए बामा या दिसो ने जोको पुए या अली सोए चीफ मिनिस्टर यमनान खेमचान ने सोशल मीडिया लिहीन मुसया पावे लोटा पाद वे लोटस पान सुयु चापाता हिन चापाता तोकी कियु चापाता दि फाउहि पुपा जुम छिपुयु हाय जितो तेदे न चोको सुयु अले हान हाय दाउ दो तेले हिन जितो तेदे हिन ची पाला दि फाउमा हि पुपा पुए नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरबाम दुहि तिथि तिथि हि लमा शियु ना फुयु गारी चले छि हाय रेसुमन सु तसा खुसा जो सुना इम्फाल हिनो इम्फाल हि बल लराय दुने जिरबाम हिनो तपारे युवे यतो जिरबाम हिनो कुपुयु ngatam बिसोर्जि ने पावे गारी ख्रिस्रु हिनो पेट्रोल फुयु गारी काचा डिजल फुयु गारी कास लवा थौ फुयु गारी तै ते राजा नाय प्याज फुयु गारी अको अल्या अलु फुयु गारी अना अल्या न अचुख्री फुयु गारी राजा सलोय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न लेमाय थिरांगाव लेला तकुकियु गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ख्रिसुहिनो वंगलुय माही अपॉइंटमेंट लेटर्स हाई जो जीपले जुए हा नई सोजें हे वही लु माहे प्राइम मिनिस्टर ने ची पाला युद्ध कुपुयु मान पाए हाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नले माही वा पैरा दुने लिने पे ये पे पुवे यू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रोबियो न इंडिया ही तेथे अद्दा वैहा सुराय दोनों जो कोलकाता ही वही लौदे पी वही वही हाउ हने नो वाशिंगटन अलिया न्यू दिल्ली ही ट्रावे लाथा क्वा बाबा बस सुराय दोनों सुम्चु पीलो राजा अलिए मापु मार्को रोबियो वही वही हाउ हने ही नो ट्रेड डिफेंस एनर्जी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी अलिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ही का बाबा वासलोरा दोनों फ्राम ला युवे इंडिया ही बी यू एस वे एम्बेसडर सर्गियो गोर्न मपु रोबियो एयरपोर्ट ही नो सलो यू एस वे कुपुय मान पाया है मपु रोबियो नो कोलकाता ही बी पी दिल्ली की सेंट थेरेसास मिशनरी ऑफ चैरिटी वे हेडक्वार्टर मदर होम सिटी ही बी बी यू चिल्ड्रेंस होम हिया तब जुले जुए मपू गौर ने सोशल मीडिया ही ने मुसे पावे जनु न्यू दिल्ली ही बिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दवा डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड अल्या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग फ्रेमवर्क क्रिप काम बाबा वसुरा दुन सुमचु पिले जुए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पावे इंडिया अले साइप्रस न अच्छी सौ प्राबियु सेक्टर्स सेमी कंडक्टर
space alia artificial intelligence kri hi ko was so zolo vye chipa han hai cyprus ve president nikos christodoulis alia pitha phuma kri rastrapati bhavan hinu do to va kyu hinu pang au vye united nations peace keeping mission kri hinu lebanon hinu was a bu Indian Army Officer Major Abhilaksha Baragye Tsuk Khosuyu, United Nations Military Gender Advocate of the Year Award 2025 Ha Barak Lawa, Indian Peace Keeping Hi Bhyungaluyu Mai Adar Prade UN Vy Peace Keeping mission hi indano ya dukhaso sa wasobe zobekop zora hana kai tripya akas mani infal hinoi muso hi ye ye zna me hino mpo so so lo so so na chilo la ke ala khosa chilo la lojino inyo zpa ya hai ni bai

0: जो नौशनाव पिंग ने तुम ला ल मेमोरी वर्स ल खर्चान ल कमथा कमथा मथाला कैन साइ रे ने तुम नि वरे न सो मिरनो अरा भनाव आतम नि संफंग रि नाउ से
1: ओय

0: रेडियो क्लास समग्र शिक्षा मणिपुरना क्लास थ्री दगी क्लास एट फाउगुद तमनीब महिरोइसिंगी निमित खुदिंगी तोंगान तोंगान ब सब्जेक्ट सिंगी दमक रेडियो क्लास संदोकचरी अयुक पुंग तरुक मिनिट निफु अमदी नुंथिल पुंग ओहु मिनिट कुंथ्रा मंगा द संदोकचरी बा लेसन सिंगसी संगाई चैनल अमदी आकाशवाणी इम्फाल गे यूट्यूब ता लाइव ओइनसु ताब फंगदिगनी महिरुई कयाना लेसन सिंगी क्विज ता सरुक यादुना सेलगी मनासु फंगनख्रे परासु खंगुबा मनासु फंगबा कानबल हौसी वहांग सिंगी पाखुम पिजरीब मोबाइल नंबर 9378120495 ता व्हाट्सएप की खुथांग दा योहन बिलो खंगजिन बिगदबा अमना अदोंगी पाखुम अदु वहांग हंगजब नुमित अदु मक्तदा हाइबदी एपिसोड अदु संदोकु नुमित अदु मक्तदा अइखोइद पाखुम थाबिरकदबनी
1: हाय तोम्बा
2: इचे
1: नंगी 50% डिस्काउंट पीबा रेस्टो पोकेमोन पाक्तो लोइरे हाइने करमाइन तोरिनो
2: लोइदि कदाय देगिनो दा अदुग इचेन ने 50% हाइदो 50% खतनते 50 to 60% ने ऑफर पिरिसे अदुग स्टॉक त लैत्रग सुने हौजिक अदुमक बुक टोकसि लगा डिस्काउंट अदुमक त अदुम पिबगी खुदोंग चाबसु लैबने
1: हाइबदि
2: हाइबदि ने कनागुमबा मना मचागी लुहोंगबगी ओनपोट ओइन हापसेनिंगबा लुहोंगदबदि मतम खरा वालिबा नत्रगा युंगी दरकार ओइबदो हौजिमक बुक टोकसि लगादि थाखरगी सिल्वर जुबली ऑफर अचौब डिस्काउंट पीबना फंगदी
1: इने मचानुपी लुहोंबगीबदो रेस्टो पोकेमोन पार्क सिदा हौजिमक बुक तौनेनबा हाइबिरुरगे
2: होइसे रेस्टो ऑफ मैट्रेस मियामने हेना खंगबिरे हिप्पद हकचांगदा यामना कंफर्टेबल ओइबा मोमपाकनी सिल्वर जुबली ऑफर सिंगासी अदोमसु सोइदन लोबी हो नसिमक लेंसिन बिरक्सी पेना स्टोर
3: येस्कुल मोयरांगखोम द लैबा दिस्काय लाक एविएशन ना यामना अपिक पथागी फीज हुनबिदुना केबिन क्रू ओमदि ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग तौबिबा यारगनी सही करा मंगा हेन एविएशन गि लमदा थबक तौबिरम लबसिना चलाइजबा मणिपुरि अमतंगायरब इंस्टिट्यूट नि माइरोइ सिंगदा फ्री यूनिफॉर्म सु पिजगनी इंस्टिट्यूट असिदगि केबिन क्रू ओमदि ग्राउंड स्टाफ चाम हेन पुथोपुसु गमख्रे अकुपा मरोल गिदामक 8582973800 द कांटेक्ट तौबियु

那个里昂了的那一边么，也比忙的头上屋里边。买别买买别买不好，打的血龙不给挖起的米，忙不也不叫你打的，打的挖起的锅不好。阿杜那里洗好的还不都得，那闹就也比头一些，他那个头上屋边，打的那看门的都洗了。खजी तड़ी हाबी को फिरांगजी मथकतंग हाकते दी मुंगोंदे लिंचे लगे पोथा भी हो फायो याम बना शेरोंडे नोंग या इवाई बुंग

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हर श्रृंगार लेकर मैं माधुरी हूं आज की रात आपके साथ। श्रृंगार में आभूषणों का बड़ा महत्व है। आभूषण कह लीजिए, गहने कह लीजिए, ये प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम रहे हैं सदियों से। प्रेम का ऐसा ही एक प्रतीक है कानों में लटकने वाला झुमका, जो खूबसूरती में तो चार चांद लगाता ही है। ये उन लम्हों को भी बयां कर जाता है जब हर आहट दिल को छू जाती है।

लता जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आपने सुना फिल्म परख से, और झुमका तो मिल गया, अब आगे की क्या बात है? बात यह है कि कानों में झुमके जब अपनी मध्यम सी झनकार छोड़ते हैं तो जिसके कानों में ये होते हैं ना, उसका अंदाज ही बदला बदला नज़र आता है, और ये झुमके दिल की हर लहर की खबर दूसरे तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि झुमका इतना रोमांटिक हो सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर भारतीय सिनेमा ने तो इसे खूब इस्तेमाल किया है अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग सीन में, और हम भी ऐसे ही गीत आपके लिए लाए हैं। अगला गीत है आपके लिए फिल्म दोराहा से, आशा जी की आवाज़ में ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

अमानुष फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और बात हो रही है आज हर सिंगार में झुमके की। झुमका सिर्फ गहना ही नहीं, ये प्रेम का प्रतीक है। और देखिए शेर में क्या खूब कहा है कि चांद है जो आसमां में, वो तो है उसकी जबी, और तारे हैं ये सारे उसके झुमके की तरह। और चलिए वो गीत भी सुन लेते हैं हम जो झुमके के लिए बहुत ही जाना जाता है। जी हाँ, आप समझ गए ना, फिल्म मेरा साया से ये गीत आप सभी के लिए आशा जी की आवाज़ में।

भाई हमारे श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि झुमके की बात हो रही है, झुमका बरेली के बाजार में कब गिरने वाला है। तो भाई लीजिए, गिर भी गया झुमका बाजार में। और अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम ये जरूर कहेंगे कि बहुत ही आकर्षक गहना है, और इसका जो है सांस्कृतिक अर्थ भी है। संस्कृति में अगर देखें तो झुमकों का एक अलग ही महत्व है। बहुत तरह के झुमके मिलते हैं, और जब भी झुमके श्रृंगार का हिस्सा बनते हैं, चेहरे की जो चमक है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। और मोहब्बत में तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि मोटर ना बंगला, झुमका ना हार मांगू। और क्या मोहब्बत में मांगा जाता है ये।

0: ये गीत सुना आपने फिल्म किस्मत से शमशाद बेगम, आशा जी और साथियों की आवाज में।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
3: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुराया है?
4: मेरा दिल।
3: क्या?

0: अंग हंस तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: हर सिंगार का ये सफर यहीं तक।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
3: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
2: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान कालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Nipunika Shahid. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi today. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the US perspectives on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
5: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
4: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rose Garmela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. In the 19th edition of Rose Garmela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government departments and organizations were distributed. The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of the next month, citing that the land was acquired for strengthening defence infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। और आज की रात गीत मेरे मनमीत लेकर मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है गीत मेरे मन मीत का, और इसमें हम सुनवाते हैं आपको गोल्डन एरा के गाने बिना रुके।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, सिर्फ FM गोल्ड पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है गीत मेरे मनमीत का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी आप सभी के साथ। और गीत मेरे मनमीत में हम और आप सुनते हैं गोल्डन एरा के गीत, और वो भी बिना रुके।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। इसी के साथ दीजिए माधुरी को इजाजत गीत मेरे मनमीत से। आप बने रहें आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुरा साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, 4 पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता हैं। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांसकी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूवान काउंटी की लियूशेनयू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग के अंतर्गत 5वें उप कार्य समूह भूमि की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क महानिदेशालय ADGPI ने कहा कि यह बैठक भारतीय सेना और रूसी थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jay Shankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. Defence Minister Rajnath Singh has inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra yesterday. The project developed by Naib Limited will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. Speaking on the occasion, the Defence Minister said that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defence manufacturing through the Make in India initiative.
3: Self-reliant India.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी एक और कहानी, गुमराह। जी हाँ, मुझे भी याद आ रही है ऐसी एक कहानी जिसे याद करके कभी दिल तो कभी आंखें भर जाती हैं। निशा उस दिन कॉलेज से लौटकर चेंज ही करने जा रही थी कि अचानक डोरबेल बजी। कौन हो सकता है इस समय? माँ तो अभी अभी सब्जी लेने गई हैं।

यही सोचते सोचते निशा ने दरवाजा खोला। सामने मां खड़ी थी, लहूलुहान, अस्त व्यस्त, बदहवास, घबराई हुई। क्या हुआ माँ? माँ को इस हालत में देखकर निशा घबरा गई। बेटा, वो अभी मैं जा ही रही थी कि अचानक पीछे से दो लड़के बाइक पर सवार होकर आए और मेरी चेन खींचकर भाग गए। बोलते बोलते माँ रो पड़ी। कोई नहीं माँ, आप तो ठीक हो ना? निशा ने माँ को सहारा दिया, लेकिन वो घबराई हुई थी। बोली, बेटा वो चेन तेरे पापा की आखिरी निशानी थी। ये कहकर माँ फबक पड़ी। माँ के कपड़े मिट्टी में सने थे, गिरने से घुटने छिल गए थे, गले में खरोंचें आई थीं जिससे खून बह रहा था। निशा माँ को लेकर पहले डॉक्टर के पास और फिर पुलिस स्टेशन गई और कंप्लेंट लिखा आई। वो सोच रही थी कैसे भटके हुए ये लड़के हैं, जरा भी संवेदना नहीं, माँ जैसी महिलाओं से इस तरह की क्रूरता। उसे एक पुराना गीत याद आने लगा था।

अगले दिन पुलिस स्टेशन से फोन आया। कुछ लड़कों को पकड़ा था उन्होंने। निशा की माँ को शिनाख्त के लिए बुलाया था। निशा माँ को लेकर पुलिस स्टेशन गई। कुछ लड़कों को उनके सामने लाया गया। उनमें से एक को देखकर माँ बोली, हाँ हाँ यही है वो इंस्पेक्टर साहब। निशा, जो अभी तक कुछ कागजी कार्रवाई में व्यस्त थी, माँ की आवाज सुनकर नजर उठाई तो देखा कि वो लड़का लगातार निशा को ही देखे जा रहा था। निशा को उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी। निशा ने याद करने की कोशिश की, कहाँ देखा है इसे, कहाँ देखा है। फिर हाँ, अचानक ख्याल आया, अरे ये तो उसका क्लासमेट है, प्रेम। निशा के होश उड़ गए। सामने प्रेम खड़ा था। उसे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हुआ। प्रेम आज एक अपराधी, एक चेन स्नैचर के रूप में उसके सामने खड़ा था।

आज सालों बाद प्रेम को देखकर निशा की आंखों में कॉलेज के पहले दिन से लेकर अभी तक की एक एक घटना किसी चलचित्र की भांति घूमने लगी। दिल्ली में वो उसके कॉलेज का पहला दिन था। मेरठ में अपने घर के नजदीक के स्कूल से 12वीं पास आउट करने के बाद उसने दिल्ली के एक कॉलेज से LLB करने की सोची और फिर आ गई दिल्ली। साथ में माँ ने भी बेटी की पढ़ाई को तरजीह दी और कुछ दिनों के बाद दिल्ली के मॉडल टाउन में आकर किराए पर रहने लगी। निशा के लिए ये एक अनजान जगह थी, न कोई सहेली, न कोई मित्र और न ही किसी से कोई जान पहचान। घर में उसकी माँ के सिवा उसका कोई और ना था। पिता आर्मी में थे और जब निशा छोटी थी तभी एक ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। बचपन से माँ ने उसे अकेले ही पाला था, जिसका निशा को पल पल एहसास था। और अब वो कानून की पढ़ाई करना चाहती थी ताकि एक ऊंचा मकाम हासिल कर अपनी माँ को वो सारी सुख दे सके जो उन्हें नहीं मिला। निशा का लक्ष्य उसका करियर था।

0: चाहिए।
1: निशा पूरे मन से पढ़ाई में अपना ध्यान लगा रही थी। उन्हीं दिनों एक लड़का अक्सर निशा का पीछा करता हुआ दिखाई देता। निशा उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब उस लड़के ने सामने से आकर निशा को प्रपोज कर दिया। निशा रुको। निशा रुक गई। जी बोलिए। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर निशा सन्न रह गई। लेकिन मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? जान जाओगी धीरे धीरे, वो लड़का लापरवाही से बोला। वैसे प्रेम नाम है मेरा, याद रखना, प्रेम जो चाहता है वो हासिल करके रहता है। ये कहता हुआ प्रेम चला गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किसी भी लड़की का पीछा करना, उसे परेशान करना, उस लड़की को कितना मानसिक तनाव देता है। उसे नहीं पता था कि स्टॉकिंग एक अपराध है। प्रेम की बातें सुनकर निशा बहुत डर गई। घर आकर उसने माँ को सारी बातें बताई। माँ ने उसे समझाया और निडरता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने को कहा। निशा वास्तव में इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहती थी, लेकिन जितना जितना वो प्रेम से दूर भागती थी, प्रेम कहीं ना कहीं उसका पीछा करता हुआ दिखाई दे ही जाता था। प्रेम लगातार निशा का पीछा कर रहा था और निशा सहमी हुई थी।
2: अरे वही तो है।

साथियों, आप सुन रहे हैं कहानी गुमराह। इस कहानी में निशा, जो कि एक कॉलेज गर्ल है, वो अपनी पढ़ाई पूरी तन्मयता से कर रही है। एक दिन उसकी माँ कुछ चेन स्नेचर का शिकार हो जाती हैं और पुलिस स्टेशन में माँ बेटी उन स्नेचर्स की शिनाख्त के लिए जाती हैं। तो निशा याद करती है कि उनमें से एक लड़का उसका पहले का क्लासमेट है, जो उसका पीछा किया करता था। अब आगे की कहानी। निशा को पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचता था और प्रेम को निशा के सिवा। लेकिन निशा इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थी कि प्रेम के दिल में दरअसल क्या चल रहा है और वो किस हद तक जा सकता है। और फिर जब वैभव से जान पहचान हुई तो निशा को ध्यान ही नहीं रहा कि प्रेम जैसा कोई इस कॉलेज में है भी। वैभव जहां पढ़ने में बहुत तेज था, तो वहीं एक संपन्न घराने से भी ताल्लुक रखता था। दोनों के विचार और करियर का लक्ष्य भी एक ही था, इसलिए निशा और वैभव में दोस्ती होते देर न लगी।

उधर प्रेम को निशा का वैभव से बात करना नागवार लग रहा था। उसे लगने लगा कि निशा वैभव की दौलत देखकर उसकी ओर खींच रही है। उसके अंदर हीन भावना पनपने लगी और वो वैभव से चिढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि निशा ने दौलत की खातिर उसका प्यार ठुकरा कर वैभव से दोस्ती की है। एक तरफा प्यार में तड़पते प्रेम को दिल का टूटना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो निशा को अमीर बन के दिखाएगा, ढेर सारी दौलत कमाकर दिखाएगा। अब वो भटकने लगा, उसके कदम आवारा होने लगे। वो उस रास्ते पर बढ़ने लगा जहां कोई रिश्ता नहीं जाता, सारे रिश्ते छोड़ जाते हैं और इंसान अकेला रह जाता है।

प्रेम बिना मेहनत किए ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना चाहता था, सो वो कुछ आवारा और अपराधी टाइप के लड़कों के संपर्क में आ गया। धीरे धीरे चोरी, रहजनी, स्नैचिंग उसका पेशा बनता चला गया। उसने दौलत तो हासिल की, मगर उसका जमीर मर गया। उसने खुद अपने ही हाथों अपनी संवेदना और इंसानियत का गला घोट दिया। निशा से प्रेम के दावे करने वाला प्रेम आज निशा का ही अपराधी बनकर निशा के सामने खड़ा था।

निशा जी, आप घर जा सकती हैं। कोई जरूरत पड़ी तो आपको बुला लिया जाएगा। इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर निशा की तंद्रा भंग हुई और वो ख्यालों की दुनिया से वापस लौटी। उसने माँ को कैब में बैठाकर घर जाने को कहा और कुछ काम का बहाना कर वापस पुलिस स्टेशन लौट आई। हजारों प्रश्न आंखों में लिए वो प्रेम के सामने खड़ी थी और प्रेम के रंग बिरंगे सब

स्वप्नों का महल एकाएक भरभरा कर गिर पड़ा। जोशो जुनो में उसने जो गलत रास्ता इख्तियार किया था उसकी असलियत सामने आ गई थी। मगर इंसान इतनी आसानी से खुद को गुनहगार कहाँ मानता है। अक्सर वो अपना गुनाह छिपाने के लिए अपना दोष दूसरों पर मढ़ देता है, और यही प्रेम ने भी किया। उसे लगने लगा कि इस सब की जिम्मेदार निशा है। ना वो वैभव की ओर आकर्षित होती और ना ही वो इस हाल में होता। उसका कमजोर मन निशा को ही दोष दिए जा रहा था।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी, और आज की कहानी गुमराह आपको सुना रही है कुसुमलता। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है इसको हमें बताना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldair@gmail.com। आपकी ईमेल का हमें इंतजार रहेगा, और अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो आप रोज सुनते हैं, मैं फिर बता देती हूँ, 9868868 6853, 9868868653। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और ईमेल आईडी मैं आपको बता चुकी हूँ, fmgoldair@gmail.com। तो आइए इस कहानी को जारी रखते हैं। सुना रही हैं आपकी कुसुमलता।

निशा को सामने देख प्रेम मानो फट पड़ा। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो निशा, सिर्फ तुम। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुम मुझे छोड़कर उस वैभव के पास चली गई। मैंने तुम्हारे लिए दौलत कमाने का ये रास्ता अपनाया। अगर मैं दोषी हूं तो तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो। कान खोल कर सुन लो, सजा मुझे ही नहीं तुम्हें भी मिलनी चाहिए। और इस तरह से प्रेम सारा दोष निशा पर मढ़ी जा रहा था।

निशा जो अब तक चुप थी, प्रेम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बोली, प्रेम हम कॉलेज में प्यार करने के लिए आते हैं या अपना करियर बनाने, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने। मुझे तो उसी वक्त तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए थी जब तुमने मुझे रास्ते में रोककर परेशान किया था। रही बात प्रेम की, तो तुम किसी से क्या प्रेम करोगे प्रेम, जब जन्म देने वाले माँ बाप से ही तुम प्रेम नहीं कर पाए, उनकी उम्मीदों पर ही खरे नहीं उतरे। आखिर जिसने तुम्हें जन्म दिया उनके प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी थी, उन्होंने बड़े अरमानों से तुम्हें कॉलेज भेजा और तुम यहाँ अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने के बजाय प्रेम का बहाना कर आवारा गर्दी करने लगे। तुम कहते हो तुम दौलत कमाने के लिए मेरी वजह से गलत रास्ते पर गए। क्या दौलत सिर्फ गलत रास्ते पर ही चलकर कमाई जा सकती है? सही रास्ते पर चलकर भी तो खुद की काबिलियत को निखारा जा सकता है। और हर इंसान को भगवान इतनी तो समझ देता है प्रेम, कि वो अच्छे और बुरे रास्ते की पहचान कर सके।

है लूटना नहीं, तुम खुदगर्ज और स्वार्थी इंसान हो प्रेम, प्यार ने तुम्हें छुआ तक नहीं है। जिस दिन तुम्हें वाकई प्रेम करना आ जाएगा ना प्रेम, उस दिन तुम मेरा तो क्या किसी का भी अहित ना कर सकोगे, लेकिन अगर तुम्हें प्यार करना आ गया तो।

ये कहकर निशा पलटी तो देखा कि सामने प्रेम की मां खड़ी थी। उन्होंने निशा और प्रेम की सारी बातें सुन ली थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मानो वो बिना कहे ही अपने बेटे की करतूतों की माफी मांग रही थी। प्रेम ने मां को देखा तो उसकी भी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी इस रास्ते पर नहीं चलूंगा, बस मुझे इस पुलिस स्टेशन से बाहर ले चलो। प्रेम की मां निशा की ओर देखने लगी और याचना भरे लहजे में बोली, माफ कर दो बेटी, मैं जिम्मेदारी लेती हूं कि ये अब ऐसा कभी नहीं करेगा। काश कि आपने जिम्मेदारी ली होती आंटी, काश कि सच में आपने अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाया होता तो प्रेम यहां नहीं होता। इनफैक्ट अगर सभी माएं बचपन से ही अपने बेटों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएं, उन्हें अच्छे से संस्कार दें, लड़कियों का सम्मान करना सिखाएं, उनकी भावनाओं उनकी इच्छाओं का मान रखना सिखाएं, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि कोई भी लड़का कम से कम इस तरह के अपराध तो नहीं करेगा। आंटी, हम अपने घरों में लड़कियों को तो हमेशा से सिखाते रहे हैं ना कि बेटा सही से कपड़े पहनो, देर रात तक घर से बाहर मत रहो, बड़ों का सम्मान करो। आखिर ये सब हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते, आखिर क्यों नहीं सिखाते? तुम ठीक कहती हो बेटी, अगर हम अपने लड़कों का भला चाहते हैं तो अब उन्हें ही सिखाने की बारी है। लेकिन अभी अभी प्रेम को माफ कर दो प्लीज। ठीक है आंटी, आपके लिए, क्योंकि आप भी मेरी माँ की तरह एक माँ हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी भी माँ को पीड़ा पहुंचे, इसलिए मैं इतना कर सकती हूँ कि प्रेम की बेल हो जाए। बस अब प्रेम से कहना कि वो सही रास्ते पर चले।

साथियों, तो ये थी आज की कहानी गुमराह। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का निर्देशन और प्रस्तुतिकरण किया रश्मि कुकरेती ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: इस दौरान भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुर साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, 4 पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। भारत इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांशकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। रूस ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि NPT के समीक्षा सम्मेलन में अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी, क्योंकि कुछ मुद्दों पर अमेरिका के कड़े रुख के कारण सहमति नहीं बन पाई। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजदूत डो होंग वियत के प्रयासों और अन्य जिम्मेदार देशों के समर्थन से कई समझौते किए गए तथा सहमति के करीब एक मसौदा अंतिम दस्तावेज के लिए तैयार किया गया। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए, जिस लक्ष्य को पंजाब ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to the regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi yesterday. Mr. Modi said in a social media about that post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific, inaugurating the U.S. Embassy support and exporting in New Delhi. Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for PAC Silica.
3: We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
2: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rose Garden Mela through video conferencing. In the 19th edition of the Rose Garden Mela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Defence Minister Rajnath Singh has inaugurated the artillery.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं सुरभि आपके साथ। कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं बिना कहे, उसमें अपनापन भी है, शरारत भी और एक एहसास भी जो दिल को तुम्हारे पास खींच लाता है बार बार। शायद मोहब्बत का एहसास ऐसा ही होता होगा जब किसी के ना होने के बावजूद दिन खूबसूरत लगने लगे और उसकी मुस्कुराहट जब भी याद आए दुनिया खिल जाए। बहुत खूब कहा है किसी ने कि वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं, मेरे इलाज मेरे चारागर के पास नहीं। वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं।

रात की खामोशी में एक चेहरा ऐसा भी होता है जो याद बनकर दिल में समा जाता है, और फिर उनकी एक मुस्कान ऐसा असर करती है जैसे चेहरे पर बिजली गिर पड़ी हो, और ये दिल बस मुस्कुराता रह जाता है।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, सिर्फ FM गोल्ड पर।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सौरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब कहा किसी ने कि हुस्न को दिल में छुपा कर देखो, हुस्न को दिल में छुपा कर देखो, ध्यान की शमा जला कर देखो, फाख्ता चुप है बड़ी देर से क्यों, सरों की शाख हिला कर देखो, दिल में बेताब है क्या क्या मंजर, दिल में बेताब है क्या क्या मंजर, कभी इस शहर में आकर देखो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।

0: क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और आपके साथ

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात होगी रात सुरमई प्रोग्राम में। और अब सुरभि को दीजिए अनुमति, आप कुछ ही देर में सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में आज चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार यह अभियान खौनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। चीन के शांक्सी प्रांत में

0: कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूवान काउंटी के लियूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों के जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह छूट H-1B वीज़ा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होगी या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर ने नाबाद 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जिस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi yesterday. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jay Shankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said, "This is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for a Pax Silica." Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing. In the 19th edition of Rozgar Mela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra yesterday. The project developed by Nibe Limited will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. Speaking on the occasion, the Defence Minister said that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defence manufacturing through the Make in India initiative. The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month, citing that the land was required for strengthening defence infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry stated that the land is essential to fulfil urgent institutional needs, governance, infrastructure and public interest project. Delhi government decided to transform all sub-registrar offices into modern technology-driven and citizen-friendly service centres. The initiative aims to eliminate

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म है कलाकार

कभी यूं मिले कोई मसलेहत, कोई खौफ दिल में ज़रा ना हो, मुझे अपनी कोई खबर ना हो, तुझे अपना कोई पता ना हो, वो फिराक हो या विसाल हो, तेरी याद महकेगी एक दिन, वो गुलाब बनके खिलेगा क्या, जो चिराग बनके जला ना हो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, रात आंखों पे ढली पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए, रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया है, उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया है, मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए, किस तकल्लुफ से गले मिलने का मौसम आया, किस तकल्लुफ से गले मिलने का मौसम आया, कुछ कागज के फूल लिए कांच के बाजू आए। उन फकीरों को गजल अपनी सुनाते रहियो, उन फकीरों को गजल अपनी सुनाते रहियो, जिनकी आवाज में दरगाहों की खुशबू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी खुशबू, कोई खुशबू मैं लगाऊं तो तेरी खुशबू आए।

रात सुरमई प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। वो चेहरा चांद है आंखें सितारे, वो चेहरा चांद है आंखें सितारे, जमी फूलों की जन्नत हो गई है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ मुद्दत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है।

और सौदागर फिल्म के इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान खोनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर लाल रोहिंगड़ी को पुनर्नियुक्त करने को मंजूरी दी थी। वे 23 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लिया गया। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की कड़ी आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह छूट H-1B वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होती है या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब किंग्स की ओर से श्रेयस अय्यर ने नाबाद शतकीय पारी खेली, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का इस रात और सुबह के बीच के खूबसूरत सफर पर। ये शांति और सन्नाटा, जब आधी दुनिया मीठी नींद सो रही है और आधी दुनिया अपनी आंखों में नए ख्वाब लेकर जाग रही है। जी हाँ, आप अकेले नहीं हैं, हम हैं आपके साथ इस शांत से सन्नाटे में, आपकी तन्हाई को सुरों से सजाने के लिए। समय हुआ है 3:11 और 41 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं आप ही के पसंदीदा चैनल, आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। हमराही कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। नमस्कार।

इस गहरे और खूबसूरत सन्नाटे में जब रेडियो पर कोई युगल गीत बजता है, यानी दो आवाजों की जब जुगलबंदी गूंजती है, तो लगता है जैसे दिल को किसी का इसी तरह से खूबसूरत सा साथ मिल गया है। जी हाँ, हम हैं आपके साथ हमराही कार्यक्रम में और आप इसे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। फिल्म महल का ये गीत आप सभी के लिए किशोर कुमार साहब की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
2: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
1: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
2: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल, आपका अपना चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 3:28 और 6 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में अपनी ही दोस्त रूपा के साथ। साथियों कहते हैं कि अकेले चलना आसान हो सकता है, लेकिन असली सफर का मजा तो तब आता है जब कोई हमराही साथ हो, चाहे वो जिंदगी का सफर हो या फिर सुरों का। और ये खूबसूरत रिश्ता बंधा होता है एक रिश्ते की प्यारी सी डोर के साथ।
1: की डोरी

इस खामोश रात में हवाएं भी कुछ कह रही हैं। दिल की धड़कनें अब काबू में कहां रह रही है। जरा धीरे से मुस्कुराकर कह दो उसे जो कहना है। जरा धीरे से मुस्कुराकर कह दो उसे जो कहना है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हमारी और आपकी सांसें बह रही हैं।

तो ये जिंदगी तेरे बिना एक पल भी चलती नहीं। अब तो ये जिंदगी तेरे बिना एक पल भी चलती नहीं। तेरा साथ इतना सुहाना लगे जैसे रेशम की डोरी नहीं। कभी कभी साथ इतना अच्छा लगता है कि दिल चाहता है कि कोई भी पल आपस में जुदाई का सबब ना बने, लेकिन वक्त के हाथों सभी मजबूर हैं। कभी ना कभी तो जुदाई का सबब आता ही है। फिलहाल आप हैं हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 3:40 और 39 सेकेंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में अपनी दोस्त रूपा के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से ये गीत किशोर कुमार साहब और लता जी की आवाजों में।

वक्त की रेत हाथों से इस कदर फिसल जाती है, वक्त की रेत हाथों से इस कदर फिसल जाती है, कुछ यादें उम्र भर के लिए दिल में ठहर जाती हैं। क्या पता कल ये रात, ये समा, ये साथ हो या ना हो, चलो आज इस पल को जी लें, क्या पता फिर ऐसी सुबह आती है या नहीं आती है। लेकिन जनाब, हम तो बिल्कुल वादे के पक्के हैं, जब समय होता है आपसे मुलाकात का तो बस झटपट से चले आते हैं आकाशवाणी के पास और जो राहें मिलवाती हैं हमें आपसे। फिलहाल समय हुआ है 3:46 और 14 सेकंड। सुनते हैं एक और मधुर सा युगल गीत जिसे हमने शामिल किया है आया सावन झूम के फिल्म से, लता जी और रफी साहब के स्वर में।

हमराही के सफ़र पर आप हैं रूपा के साथ, और फिलहाल जो गीत आपको सुना रहे हैं वो है जॉनी मेरा राम फिल्म से किशोर साहब और आशा जी की आवाज़ों में आज की आखिरी पेशकश।

0: अरुणिमा के सफर पर आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल रूपा को विदा दीजिए हमराही की कार्यक्रम से। आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने उद्घाटन दिवस पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान खोनी पलावा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध ढंग से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर आर लाल रोडिंगी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी। वे 30 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लाया गया। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियू सेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक

नमस्कार प्रणाम, आप हैं अपने ही चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह की 4:11:23। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ। नमस्कार।

अरुणिमा यानी वो सुबह की लालिमा जो दिन हमारे जीवन में एक नई उम्मीद और आशा का सवेरा लेकर आती है। तैयार रहे हर पल हर क्षण, क्योंकि आपकी जो उम्मीद है और आशा है उसी से ही आपके जीवन का सफर और भी आसान हो सकता है। तो इस आशा की किरण को अपने हाथों से फिसलने ना दीजिए, अपने दिल को काबू में रखिए और जोश को और भी ज्यादा बनाकर रखिए, क्योंकि ये जिंदगी अगर अंधेरों से भरी हुई है तो लाखों तारे भी हमारे पास हैं जो हमारे गमों को, गम की काली रातों को दूर करने में सहायता करेंगे। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रूपा है आपके साथ, अरुणिमा लेकर।

एक अंधेरा लाख सितारे। जी हाँ, अंधेरा महज कुछ पल का, कुछ क्षण का होता है। जब उस गम को हटाकर लाखों सितारे यानी हमारी जिंदगी को रोशन करने के लिए अगर हम देखें तो एक छोटी सी खुशी भी बहुत महत्व रखती है। एक छोटी सी बात जो हमारे दिल को एक नया जोश दे, एक नई हिम्मत दे। हम सभी के पास एक सुपर पावर है, एक ऐसी शक्ति जिसका इस्तेमाल करना हम सब भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सकारात्मक सोच की, विचारों की। बातें होंगी और भी बहुत सारी, पर इस गीत के बाद।

घबराना कैसा, जी हाँ, दिल को थोड़ा करना कैसा। गर्दिश में चाहे कितने भी तारे हों, लेकिन हमें हमेशा हिम्मत से ही काम लेना होगा। किसी ने खूब कहा है, जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारा संसार होता है। हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन विजेता जो बनता है ना, वो सिर्फ सकारात्मक सोच और विचारों को अपने दिल में घर करने के लिए रुकने की इजाज़त देता है और गम की सोच को हमेशा परे करता है। जब मरना ही है सभी ने, तो जीने को जो खुशी है, जीने की जो उम्मीद है, आशा है, हम उसको क्यों धूमिल होने लगे? अगर हम उसे ही धूमिल करने लगेंगे तो जीने की आशा हमारे दिल में क्या रहेगी? तो जनाब, हमेशा जोश खरोश के साथ आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत से काम लीजिए। माना कि रास्ते पर चलते हुए कुछ कठिनाइयां आ ही जाती हैं, यही तो जीवन है। अगर जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो कैसा जीवन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा के सफर पर आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31

0: मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। बातें कर रहे हैं हम सकारात्मक सोच की और विचारों की। जी हाँ, सकारात्मक सोच ऐसी सोच जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और इसी सोच को हमें हमेशा से दिल में बनाए रखना है। कभी भी अपने दिल को इतना कमज़ोर ना बनाएं कि हर दुख की घड़ी में हम घबरा जाएं। सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो आपके अपनों को सही राह दिखाने में कामयाब रहता है और उनका हौसला बढ़ाने में आगे ही आगे चलने का सबब देता है।

भाई हम तो इतना ही कहेंगे, हर दिन अगर चुनौती लेकर आता है उसके साथ साथ अपने साथ सकारात्मकता भी लेकर आता है। बस हमें उस लम्हे को थामना है, देखना है कि उस मुश्किल में, उस परेशानी में ही तो उसका हल छुपा है। बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। इसी कोशिश का नाम है जिंदगी। जी हाँ, ऐसी जिंदगी जिसे हम चाहें तो उसे विभिन्न रंगों से भर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो कुछ नहीं। गोया कि यूं माना जा सकता है कि जो कुछ भी है वो ऊपर वाले के हाथ में तो है ही, पर हमारे हाथ में भी थोड़ा कुछ तो है। जीते रहिए इसी उम्मीद के साथ। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और किसी ने खूब कहा है, वो जीवन ही क्या जीवन जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो। अगर जीना है तो सबके लिए जी कर देखो, फिर आपको इस जीने का अंदाज ही बदला हुआ लगेगा।

अरुणिमा सुन रहे हैं आप आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज की अरुणिमा के साथ मैं हूं रूपा धवन, आप ही की अपनी दोस्त। तो जनाब, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं सकारात्मक सोच की और विचारों की, तो यकीन मानिए जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे आसपास की परिस्थितियां भी अच्छी होने लगती हैं। वैसे मुश्किलों का जिंदगी में आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन उन मुश्किलों को पार करके मुस्कुरा लेना और मुस्कुराकर जीना ही असली जिंदगी है, खासकर तब जब आपके हर पल में आपके अपने साथ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खुशी के लम्हों को थामने के लिए हमें थोड़ी सी देरी हो जाती है। जी हाँ, जब तक खुशियाँ हमारे पास पहुँचती हैं हम कहते हैं, ओह कितने समय बाद हमारे जीवन में ये खुशी आई। तो कुछ ऐसी ही देरी का इजहार करता है ये गीत, जिसे आपको सुना रहे हैं दुनियादारी फिल्म से अमित कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

यकीन मानिए एक अजीब सा सुकून और गजब की एनर्जी महसूस होने लगी है अभी। जी हाँ, मुझे तो यही महसूस हो रहा है, क्योंकि यही तो जादू है सकारात्मक सोच और विचारों का। आज का अरुणिमा यहीं तक। रूपा विदा लेती है आपसे। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद फिर से भोर सुहानी कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए रूपा को। नमस्कार।

0: Sultans. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट इनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और ज्यादा प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने कार्यक्रम का मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर भी बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरिया के नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार ये अभियान खोनी पलाव क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में अवैध रूप से रह रहे हैं। चीन के शांसक्सकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्युआन क्वांटी के शियुल्यू शेनू में कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 लोगों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बांग्लादेश में कल खसरा और खसरा जैसे लक्षणों से 13 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पुष्टि और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या बढ़कर 512 हो गई है। बांग्लादेश के एक प्रमुख समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक खसरे से पुष्टि मौतों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है, जबकि संदिग्ध मौतों की संख्या 426 तक पहुंच गई है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, पक्षियों की चहचहाहट कानों में रस घोल रही है। क्षितिज पर सूरज की लालिमा ने बसेरा डाला है, क्षितिज पर सूरज की लालिमा ने बसेरा डाला है, कायनात का प्यारा तोहफा ये भोर सुहानी लाया है। स्वागत कर रही है ये ताजगी भरी सुबह, आज की नव किरणों की रोशनी में सारी दुनिया को एक नई ताजगी से, खुशियों से सराबोर कर रही है। हम भी आपके साथ वक्त की रफ्तार के साथ आपका साथ निभा रहे हैं, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड के माध्यम से भोर सुहानी लेकर हाजिर हूँ मैं आप ही की सेवा में, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। सुप्रभात, प्यार भरा मेरा नमस्कार, ये सवेरे का सूरज हम सबके लिए है।

नई रोशनी से प्रकाशित करता सवेरे का सूरज दुनिया का हर कोना अपनी लालिमा से भिगोए हुए है। धीरे धीरे ये लालिमा आसमान से लेकर दुनिया के हर कोने तक छा जाएगी और इस सवेरे के सूरज का आज के नए दिन का स्वागत करने में कोई भी कोर कसर छोड़ नहीं रहा। जी हाँ, वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, पक्षियों की चहचहाहट भी हो रही है। आज की सुबह की स्वागत की तैयारियों में सब लगे हुए हैं। ये ताजगी भरी सुबह आज और कौन सी खुशियां लेकर आएगी हमारे लिए, ये अभी तक एक रहस्य है। जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीतेगा, हम अपनी अपनी खुशियों की ओर रवाना हो जाएंगे। राह में नई चुनौतियों को पार करके एक खुशियों भरा रास्ता चुनेंगे। पत्तों पर बिखरी ओस की बूंदें, ठंडी हवा, ये सब इस बात का सबूत है कि कायनात ने हमें आज का दिन एक और तोहफे के रूप में दिया है। और कौन कौन इसकी स्वागत की तैयारी कर रहा है या कैसे स्वागत कर रहा है, सुनते हैं इस गीत के माध्यम से।